नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छो प्राप्त होती, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार। नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

उतनी देर तक इस दे विच नाम दा बीज नहीं बीजा जा सकता। सो इस धरती नू सुधारन दा भाव है, इस नू बहुत ही पवित्र रखिया जाए, साफ सुथरी रखिया जाए, और इस धरती दे द्वारा इस नू साधना है कि इस दी आता न विगड़न, ये खान पीन दे विच ही मस्त ना रह जाए। बहुत कुछ असी गलत खाने हाँ, बहुत कुछ असी गलत पीने हाँ, उसनू मैं डिटेल च नहीं कहना चाहता, आप समझ जाओगे कि जितनी देर तक तन ही असी इसनू नहीं सुधारिया, इसका खाना पीना नहीं सुधारिया, उतनी देर तक नाम दा बीज नहीं बीज होएगा। सो नंबर एक है, और किस एक्सट्रीम तक इसनू सुधारना है वह प्रमाण देख के फिर मैं मन दे लेवल की गल आरंभ करांगा। हुण तुसी सुन के आप जी ने अंदाजा लगा लेना कि बाबा जी किस किस्म की देही सानू चाहते हैं कि असी इसनू डिवेलप करिए। कहते हैं कंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास अठ सठ तीर्थ का मुख टिका, तित घट नाम निवास उत्मत्ती सलाहना सच नाम गुणतास। हुण इसके अर्थ कहिंदे कंगू की काया, ये जिहड़ी तुहाडी काया है ना, ये इतनी शुद्ध होवे, इतनी शुद्ध होवे जिस तरह के केसर हुंदा है, कंगू केसर नूं आखदे, पूजा पाठ आदि दे विच समग्री दे विच केसर वरत्या जांदा है, केसर नूं शुद्ध मनदे हन। केसर जितनी शुद्ध एक काया होवे, वो काया केसर जितनी ताही शुद्ध हो सकती है अगर इसकी शुद्धताई सुचम सफाई जो है वो रखी जाए। इतनी ए शुद्ध पवित्र होवे कि इस दे पास बैठिया इस दियां जिहड़ियां वाइब्रेशंस हन वो बहुत प्यारियां, बहुत शुद्ध हों। कई बंदियां दी काया ही ऐसी हुंदी है कि उन्हां दे नजदीक बैठ के तुसी डिस्टर्ब हो जाओ, नजदीक बैठ के डिस्टर्ब हो जाओगे, सिर्फ और कोई गलबात वो ना करन, पर जस्ट अफेक्ट ऑफ द बॉडी इज सो हैवी, क्योंकि बॉडी दे अंदर जो बहुत कुछ ऐसा है जो गलिया है वो चल रहा है, जेड़े अशुद्ध ख्याल हन, बुरे ख्याल हन, वो बॉडी नू भी अशुद्ध करते हैं, अते बॉडी तो उस तरह दी फिर बाहर जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उनका कोई साडे वाल अखियां पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन इन्हां दे विच शुद्धता ही नहीं है। कोई साडे वाल स्टेयर करे तो असीं अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिंदे हां, ये अखां क्योंकि शुद्ध नहीं हैं, इन्हां अखां च प्यार नहीं है, इन्हां अखां दे विच मिठास नहीं है, इन्हां दे विच दृष्टि दे विच विकार है, बुरियाई है, गंदगी है। तो ये अखां ही जदों असीं किसे वाल करदे हां दे मेक द अदर परसन फील वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि देही शुद्ध नहीं है। एक पासे बाणी च तरसदे हन कि गुरु बाबा जी साडे वल निगाह करो, साधु महापुरुषां नूं लोग कहिंदे हन साडे वल अखियां करो, साडे वल देखो, कॉन्ट्रास्ट देखो, किसे दा साडे वल देखना सानू बॉदरिंग हुंदा है, किसे दा साडे वल देखना सानू शांत कर दिंदा है। अखां ते ओही हन, देही ते ओही है, किसे दियां अखियां इतनियां शुद्ध हो चुकियां हन कि उन्हां दे विचों रब अते उस दियां वाइब्रेशंस मिलदियां हन, किसे दियां अखियां अजिहियां हन उन्हां दे विचों कुछ होर ही दिसदा है। देही नूं शुद्ध शुद्ध करो, पवित्र करो। कंगू की काया कहिंदे काया नूं केसर वर्गी शुद्ध कर दिओ। रत्ना की ललता नंबर दो, ललता आखदे हन इस जीव नूं जबान नूं, कहिंदे ये जिहड़ी जबान है इस दे विच्चों जिहड़े लफज निकलन, बोल निकलन, वो इस तरह होण जिस तरह रतन हीरे मोती जवाहरात निकल रहे होण। ये देही दी साधना है। हुण आप सारे ही अपने आप नूं सवाल कर लो कि जदों असीं बोलदे हां उदों की निकलदा है, की निकलदा है।

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दैम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मूह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहां तो वखरी है, साडा जिंदगी जीण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो।

कोई नाम जाने तेरा। मैं तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं दिते करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनिए।

कबीर साहब अपने घर बैठे सन, किसी ने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोलिया, कौन आया? सिकंदर लोधी बादशाह, ए सिपाही आए ने।

कबीर साहब जी उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वर्तनी, तुसी जान तो इनकार कर दे हो। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कहने के भाई ए हुक्म ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाहियां दे नाल।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहिंदा कबीर,

तू मैनू सलाम नहीं कीती। कबीर साहब फिर की कहंदे ने बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया

तू मेरे हरी दी समान ता है नहीं कि मैं तेनु सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुगो अटाई

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो, मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वल सिपाही लै के तुर पए ने।

छिपाई आली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआं ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहरा है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे हुए अपनी श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

हाथी अगे नहीं तुरद जदू बहुत कुंडे पए हाथी नी मुहावत नू थले सुटिया छिपाइया नू लताड़दा जंगल वाल भज गया हुण सोझी आई कि ए ता सच

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

सुन के सरदार बुलाका सिंह ने नीवी पा ली अते सोचन लगा कि ठीक ही मैं कैरां वाली करतूत कर रहा हां। जे मैं हरमंदर साहब दी शान बदले जान दे दिंदा कि मस्से नाल लड़ मरन वास्ते होर भी सिख आउंदे कि मैं अपनी जान नूं धर्म नालों ज्यादा प्यारी समझ के भज आया हां। ते फिर सिख ने आप ही जवाब दिता, नहीं, जे मैं उथे ही लड़के मर जांदा ता हरमंदर साहब दी हो रही बेअदबी दी खबर इन्हां सिंघां नूं कौन पहुंचाउंदा। इन्नी गल सोच के सरदार बुलाका सिंह ने जथेदार नूं ताना हे

शिमब्रस्त वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणिया दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ए बचन अपने पले बनांगे।